0: गुड मॉर्निंग एवरीवन और नमस्ते नमस्कार सीताराम और अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू योर अर्ली मॉर्निंग एडिशन ऑफ शबनम एंड स्पेशली डिजाइंड टू असिस्ट यू विद योर अर्ली मॉर्निंग चोर्स एंड टू पुट यू इन ए पॉजिटिव एंड गुड फ्रेम ऑफ माइंड एंड टू ऑल्सो इग्नाइट स्पार्क्स ऑफ स्पिरिचुअल इंस्पिरेशन टू यू एंड योर लव्ड वंस और ऐ बहारे बा अरुणिया चंद रोज देख लो इसका तमाशा चंद रोज और ऐ मुसाफिर कूचका सामान कर इस सलामी है बसीरा चंद रोज From Trinidad and Tobago, my name is Boy Muhammad, now extending to you a very warm welcome to join my youthful and brilliant producer, presenter, Richard Aziz.
1: Richard Aziz is now 24/7 on the internet. Hi there, everybody. This is Ishri Singh. Join my good friend Richard on ShabnamRadio.com. Listen live. Listen now. Oh, yes, on ShabnamRadio.com.
2: When in Toronto, go to El Dorado Jewelry for all your jewelry needs. Check them for a wide selection of beautifully crafted West Indian-style jewelry. Get some of the best designs in gold, silver, diamond and all precious gem jewelry. They've got some of the most beautiful pieces of jewelry you will ever lay your eyes on. And you know what? You'll be able to get it at a very reasonable price. El Dorado Jewelry, located in Toronto at Morningside and Shepherd. When there, tell them the Beamer sent you and you'll get yourself an extra special discount. Call them, 416-724-6500 is their number. El Dorado Jewelry, number one for jewelry in Toronto.

अरे मेरा भी एक सुंदर साजन था, उसकी आंखों में नशा, बाजू में ताकत और दिल में हिम्मत थी। बिजली की तरह नाचता हुआ मेरे पास आता था, गाता था, नाचता था।

0: तुम्हें कैसे बताऊं कि पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, बारिश खत्म होने से पहले वापस आ जाऊंगी।
1: Promise?